0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanj hai, khima hai,
1: zindagi ik rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez.
1: Culture of Punjab.
3: अच्छा, अगर हम एवरेज 70 साल तक जीते हैं तो आपको पता है कि अपनी लाइफ की डिवीजन कैसे होती है? करीबन 25 साल तो हम सोकर गुजार देते हैं, 8 साल पढ़ाई करने में, 6 साल आराम करने में या यूं कहें कि बीमारी में, 7 साल टीवी देखते हुए या हॉलिडे पर, 4 साल खाने में, 5 साल सड़कों पर, घर से काम, काम से फिर वापस घर. तो बचे कितने? करीबन 12 साल. सिर्फ 12 साल, यही टाइम, यही साल हैं जिसमें खूब सारी मेहनत करनी है हमें. और अगर ये टाइम भी हाथ से गवा दिया हमने, then don't you think we've lost nearly everything? Well, सोच कर देखें, it's a very interesting thought जिसे शेयर किया मैंने यानी प्रीत ने आपके साथ आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में.

0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: अच्छा, जब आप और हम कॉलेज पास आउट करते हैं ना, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा टारगेट होता है जॉब ढूंढने का। कई बार हमें एक बहुत बढ़िया जॉब मिल भी जाती है, बट स्टिल एक क्वेश्चन मार्क, सैलरी इतनी कम क्यों? पर ना, एक बात हमेशा याद रखें कि एट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर व्हाट यू लर्न इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू अर्न। जो आपने अपने करियर की शुरुआत में सीखना है वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि आप अर्न कितना कर रहे हैं उस टाइम। तो जी, इसलिए एक्सपीरियंस गेन करें, काम को दिल लगा कर सीखें, तो सैलरी ने तो खुद ब खुद पीछे आ जाना है।

0: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ ਪਰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ
4: जब तक आप ये यकीन नहीं करते कि जौन सा काम आप कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे बढ़िया काम है, आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। और इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा टिप है। अच्छा, ऐसा करें, दिल को अपने काम में बसा लें और काम को अपने दिल में, फिर देखें रिजल्ट कितना कमाल का होता है। मेरे को पता है कि आपने ऐसे तो मानना नहीं है, चलो ट्राई कर लें, हर्ज भी कोई नहीं है।

0: ਕੁੜੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
1: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
2: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ।
3: कुछ दिन पहले मैंने पेपर में हमारी फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर और मैगसे अवार्ड विनर किरण बेदी का एक आर्टिकल पढ़ा जो खास कर पेरेंट्स के लिए था एंड वेरी स्पेशली फॉर द पेरेंट्स ऑफ डॉटर्स, बेटियों के माँ बाप के लिए। उसमें एक बहुत टचिंग सी बात लिखी हुई थी कि जब भी किसी घर में एक बेटी जन्म लेती है तो आंखें खोलते ही अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से, नाना नानी से सबसे एक ही सवाल पूछती है, एम आई वेलकम इन द फैमिली, क्या मैं आपका गुरूर हूँ या आप पर बोझ हूँ। और ये पेरेंट्स ही हैं जो उसे सहारा दे, उसकी ताकत बन सकते हैं आगे बढ़ने में अच्छी एजुकेशन देकर। किरण बेदी कहती हैं कि वो एक छोटे से शहर अमृतसर से हैं जहाँ जरूरत है उनके अपने पेरेंट्स जैसे पेरेंट्स की, हजारों लाखों की संख्या में, जो खास कर अपनी बेटियों की एजुकेशन पर इन्वेस्ट करें और उन्हें समझा पाएं कि किताबें सोने चांदी की ज्वेलरी से बहुत ज्यादा कीमती है, जो उन्हें ऐसी जिंदगी दें कि फिर कोई बेटी ये दोबारा न कह सके कि अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजिए।

आज के शो कल्चर ऑफ पंजाब में हमने अपने आसपास के हर पहलू, हर फील्ड को टच करने की कोशिश की, लेकिन एक कोशिश नहीं, वादा करना है हमें अपने आप के साथ कि हम किसी न किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर विल ट्राई एंड मेक अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ द अंडर प्रिविलेज सेक्शंस। एक नहीं, हजारों ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें जरूरत है आपके जैसे लोगों की, जिनके पास जरिया है सोसाइटी में चेंज लाने का।

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: हर चीज को हर सिचुएशन को देखने का हर एक का अपना नजरिया है। अब एक अमीर बाप ने अपने बेटे को भेजा एक गांव में ये जानने को, ये देखने को कि लोग गरीबी में कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं। एक दिन बिताकर जब बेटा वापस आया तो डैड ने ट्रिप के बारे में पूछा। पता है आंसर क्या था कि डैड मैंने देखा कि हमारे पास एक डॉग है और उन लोगों के पास चार। हमारे पास एक फाउंटेन है गार्डन के सेंटर में और उन लोगों के घर के पास से झरना बहता है। हम लोगों के पास इम्पोर्टेड लाइट्स हैं गार्डन में, उन लोगों के पास बहुत सारे तारे हैं। उस बेटे की आखिरी बात एक्चुअली लेफ्ट हिज डैड स्पीचलेस। गेस व्हाट ही सेड इन द एंड, ही सेड थैंक्स डैड फॉर शोइंग मी हाउ पुअर वी आर।

तेरे रूबरू एक दिन तेरे ही किसी अजीज की सिफारिश लेकर, मेरी तो तू नहीं सुनेगा मुझे पता है, वही आएंगे मेरे साथ मेरी गुजारिश लेकर।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि हम लोग एक्सप्रेस करने में थोड़ी कंजूसी कर जाते हैं। पता नहीं हेजिटेशन है या कुछ और, बट जो भी है गलत है। क्यों नहीं हम खुलकर बोल सकते अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को कि वो हमारे लिए बहुत प्रेशियस हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत खास हैं। पता है कई बार वक्त हाथ से फिसल जाता है और पीछे छोड़ जाता है बहुत सारा रिग्रेट। इसलिए सारी घबराहट, सारी हेजिटेशन छोड़कर उन लोगों को थैंक यू बोले जिनकी वजह से आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है। और फिर देखें सामने वाले तो खुश हो गए ही, आप कितना ब्यूटीफुल और अच्छा फील करेंगे।

एक रिनाउंड म्यूजिशियन एक वायलिनिस्ट से किसी ने पूछा कि आप कितना अच्छा वायलिन बजाते हैं, कितने लकी हैं ना आप, तो आंसर पता क्या आया कि ये लक नहीं प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर मैं एक महीना प्रैक्टिस नहीं करता तो ऑडियंस डिफरेंस बता सकती है, अगर मैं एक हफ्ता प्रैक्टिस नहीं करता तो यकीन माने मेरी बीवी फर्क बता देती है, और अगर एक दिन मैं कहीं प्रैक्टिस नहीं करता देन आई माइसेल्फ कैन टेल द डिफरेंस। सो इसलिए कहते हैं कि आसानी से जो मिल जाए उसमें वो मजा नहीं जो मेहनत करके पाने में है। पर साथ ही साथ एक कड़वा सच ये भी है कि हमें कामयाबी मिले तो वजह मेहनत और कोई दूसरा कामयाब हो तो किस्मत। नाउ दैट्स नॉट फेयर एट ऑल।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਇਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: एक बहुत ही खूबसूरत ओल्ड लेडी से किसी ने उनकी खूबसूरती का राज पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे लिप्स ब्यूटीफुल हैं क्योंकि ये सच बोलते हैं, मेरी आवाज अच्छी है क्योंकि इससे किसी के लिए कोई बुरी बात नहीं निकलती, मेरे हाथ खूबसूरत हैं क्योंकि ये दान करते हैं और मेरा दिल अच्छा है क्योंकि ये सबको प्यार करता है. Now that's beauty in the real sense and that's the beauty tip from my end for the day.